और करेंसी रेट। पल पल की खबर हर पल, आपकी पहचान आपकी जबान, आपकी आवाज, वॉइस ऑफ नॉर्वे।

0: आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है।

अपना रेडियो स्टेशन। हिजरी तकवीम का पहला महीना मुहर्रम इस्लामी तारीख की ऐसी इबरत खेज और बसीरत अफरोज यादों को दोहराता है जिन्होंने इंसानी सीरत की राह में अजमत कमाल के मीनार कायम किए। जैनब ने कहा, लुट गया जोरा का घराना, बाबा मेरी चादर को बचाने चले आना। माँ देख रही थी तरे खैमा से ये मंजर, लाशे अली अकबर को जहीफी में उठाना। ये कमसनी और शौक